0: हाँ बच्चे रहना जी।
1: सुनो भाई, पूजा खोटी
0: खोटी,
1: नियत खोटी
0: खोटी,
1: पर खोटे सारे धंधे।

0: हाँ बच्चे रहना जे।
1: सुनो भाई, पूजा खोटी
0: खोटी,
1: नियत खोटी
0: खोटी,
1: पर खोटे सारे धंधे।

0: कुछ कहोगे नहीं?
1: वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं तुमसे हमेशा कहता रहा, और अब जब कुछ कहना चाहता हूं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूं।
0: ऐसा मत कहो।
1: कितना बदनसीब हूं मैं, जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा, और अब जब तुम्हें घर का बना हूं तुम बाहर जा रही।
0: फिर तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। मैं सब कुछ जानती हूं, तुमने सबको धोखा देना चाहा, लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए। हम सब इस धोखे में खुश हैं, माँ पिताजी तुम मैं हम सबको इतने साल जो तलाश थी वो मिल गया, तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी।

0: बच्चे रहना जे।
1: सुनो भाई, पूजा खोटी
0: खोटी,
1: नियत खोटी
0: खोटी,
1: पर खोटे सारे धंधे।

0: हाँ बच्चे रहना जी।
1: सुनो भाई, पूजा खोटी
0: खोटी,
1: नियत खोटी
0: खोटी,
1: पर खोटे सारे धंधे।

0: कुछ कहोगे नहीं?
1: वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं तुमसे हमेशा कहता रहा। अब जब कुछ कहना चाहता हूं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूं।
0: ऐसा मत कहो।
1: कितना बदनसीब हूं मैं। जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा, और अब जब कि मैं घर का बना हूं तुम बाहर जा रही।
0: फिर तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। मैं सब कुछ चाहती हूँ। तुमने सबको धोखा देना चाहा, लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए। हम सब इस धोखे में खुश हैं। माँ, पिताजी, तुम, मैं, हम सबको इतने साल जो तलाश थी वो मिल गया। तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी।